0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ओपिल

0: क्या बात बोला चिड़िया, मेरा दिल पिथर पिथर हो गया।
1: अयो मिम्मल का गंडी, नेनु नेनेदो सरदागा रास्कुन पाटा प्राक्टिस चेस्कुंटुन्नानु अंते अंते अंते रंडी।

0: because the competitiveness will increase.
1: Well, let's now hear what Union Minister Ashwini Vaishnaw had to say at the cabinet briefing on the Kanpur-Kabrai highway project.
2: कानपुर को भोपाल से जोड़ने वाला लाइन उसमें कानपुर से काबराई के बीच में फोर लेन एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे 7,145 करोड़ और उसके आगे वाले सेक्शन का भी उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है। आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का ये कानपुर से काबराई ये जो अलाइनमेंट है इस अलाइनमेंट पे और ये अपने आप में बहुत बड़ी एक आर्टरी है पूरे बुंदेलखंड के कई हिस्सों को जोड़ने वाली और आगे कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। अभी जो 3.5 घंटे लगते हैं कानपुर से काबराई वो मात्र 1.5 घंटे रह जाएगा।
1: सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट द 6-lane द्वारका टनल। व्हाट आर द प्रिंसिपल चैलेंजेस दैट यू सी व्हेन यू टॉक अबाउट दिस 8.1 किलोमीटर हाईवे प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द सिटी? You've seen a lot of benefits, especially when you're going to the industrial townships from Delhi itself and back. There's a lot of movement of passenger traffic. We're seeing a lot of movement of freight traffic as well.